सवा जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे बोल न जाने माया मद माता मरना चीत न आवे जिसके सिर ऊपर तू

साहिब जियो जब लौ नहीं भाग लीलार मुदा तब लौ भ्रम के फिरते बहतायो कल घोर समुद्र में बूढ़त थे कब हू मिट है नहीं रे पछतायो तत विचार यह माथरा जगतारन का अवतार बनायो जपयो जिन अर्जन देह गुरु फिर संकट

और से लिसन लेट दैट क्रिएटर वरी हु मेड द वर्ल्ड जिन्हें उपाया जग जग इज द वर्ल्ड उपाया मीन्स टू मेक सो करता दैट क्रिएटर द वन हु डज एवरीथिंग लेट हिम वरी द वन हु मेड द वर्ल्ड डिड यू मेक द वर्ल्ड नथिंग टू डू विद यू सो करता चिंता करे लेट हिम वरी हु मेड द वर्ल्ड